जसपाल सिंह की आवाज से सजा ये गीत आपने सुना सावन को आने दो। इस फिल्म से राज कमल का संगीत था, मदन भारती की लिखी रचना थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रातः के 5:36 और 16 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत आदमी और इंसान इस फिल्म से अभी आपने सुना। रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी। साथियों, प्रकृति का बहुत महत्व है हम सभी के जीवन में। प्राकृतिक नज़ारों को हम निहारते हैं, नज़ारे तो सुंदर लगते ही हैं और ये हमें फायदा भी देते हैं। हरियाली देखने में कितनी अच्छी लगती है, फूल बागीचे, इसी तरह के बाद जज्बात से सजी ये रचना आइए सुनते हैं।

फिर इस फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना 1980 रिलीज फिल्म भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी रघुनाथ सेठ का संगीत विनोद पांडे की लिखी रचना

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अनोखी अदा फिल्म से वर्ष 1948 रिलीज ये फिल्म। नौशाद का संगीत शकील बदायूं ने की लिखी रचना। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है अनूप जलोटा की गाई ये रचना।

0: ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 మెగాహెడ్స్లు. సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరి కాసేపట్లో హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే ఫర్హత్ నాజ్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की. पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी.
2: जो खेलेगा वो खिलेगा. ऑलवेज चीयर फॉर भारत. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय.
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं. हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है. 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है. देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा. दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है. इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं. भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है. पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है. झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है. कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी. साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है. उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे. पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है. होर्मोज डलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है. श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है. उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मोज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के

यस नमस्ते, हेलो, आदाब। और आप सुन रहे हैं वैष्णवी को ऑन 101.9 FM रेनबो। सो आज हम आ चुके हैं हमारे इस मोड पे जिसका नाम है नमस्ते, हेलो, आदाब। मैं आ गई हूँ और आज बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि वर्ल्ड लायंस डे है आज, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है और बहुत ही सारे डेज हैं। और आपको पता है कि इंटरेस्टिंग सा डे है आज। जानने के लिए सुनते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ आपकी वैष्णवी नेता और 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

101.9. Welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. And मैंने बोला था कि World Lions Day के बारे में बहुत कुछ जानकारी अभी मिल जाएगी. Yes, जंगल का राजा कहना आसान है, लेकिन एक लायन की जिंदगी में भी बहुत सारे challenges, responsibilities और struggles होते हैं. आज वर्ल्ड लायन डे के मौके पर चलिए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. वर्ल्ड लायन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 10th of August टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लायन कंजर्वेशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग दिस मैग्निफिशेंट एनिमल्स. Lions are apex predators that help maintain ecological balance. In India, Asiatic lions are found only in Gujarat, and recent conservation efforts have increased their population significantly. Yes, they have increased our population very significantly. Do you know what are many facts about lions? चलिए जानते हैं अगले कुछ घंटों में. बने रहिएगा मेरे साथ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

Welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. और हम अब जानेंगे कि lions and culture and history का. Lions सिर्फ wild life का हिस्सा नहीं है, हमारी कला, साहित्य, इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों में भी lions का विशेष स्थान है. अशोक स्तंभ के बारे में आप जानते ही हैं. अशोक स्तंभ में जो lion capital है ना, वही भारत का national emblem है. लायन को हमेशा से शक्ति और न्याय का प्रतीक माना गया है. एक छोटा सा थॉट से स्टार्ट करेंगे कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग द वीकेस्ट. क्या आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा. हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार बोल दूँगी. 0402323482 इज़ आर व्हाट्सएप नंबर और आप मुझसे बहुत सारे बातें कर सकते हैं उस नंबर पे. कई एक मैसेज करिएगा. यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

यस, तुझे मैंने रब मान लिया। ये बात हम किस किस को बताएंगे लाइफ में? एक फ्रेंड्स को बताएंगे, पेरेंट्स, फैमिली, लव्ड वंस, बट पहले फ्रेंड्स को ही बताएंगे। मैंने तुम्हें रब माना है और तुमने मुझे रब तरह देखा है। यस, इस लिरिक्स में बहुत सारा मीनिंग है। आपको, आपने कभी आपके फ्रेंड्स के साथ ये बातें शेयर करी हैं? करी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता दीजिएगा। यस, आप आ रहा है एक ब्यूटीफुल सा गाना, आप मदहोश हो जाएंगे उसको सुनते सुनते। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो, विद मी आरजे वैष्णवी, स्टे ट्यून्ड।

0: Hey, very hungry. What's special today?
1: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
2: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
0: And where do we taste all these?
1: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
2: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
3: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
4: Jashne Hyderabad, Jashne Hyderabad, every day after our show. Yes, aap sun rahe hain Akashwani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. Aur hum World Lions Day ke baare mein bahut kuch jankari discuss kar rahe hain. So, ab baat karte hain ek serious issue ki. Aaj lions ka kai challenges face karna pad raha hai. Habit loss, habitat loss, human wildlife conflict, illegal poaching. इसी वजह से World Lion Day का उद्देश्य लोगों में awareness बढ़ाना है. एक सवाल पूछती हूँ आप सबसे, आपके हिसाब से wild life conservation में आम नागरिक का क्या role हो सकता है? हमेशा सब लोग सोचते हैं कि हम आम नागरिक हैं और हम क्यों ऐसा बहुत सारा वाइल्ड लाइफ के बारे में क्यों सोचेंगे, क्यों हमको इस टाइप का सोचना है और एक एक्शन लेना है, क्यों? आप मुझे बताइएगा व्हाट्सएप नंबर पर. आप कुछ पता है हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? मैं फिर भी एक बार बता दूंगी, 0402323482. यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

कल हो ना हो, यस, इसीलिए तो आज का इस जिंदगी में बहुत सारे बदलाव के साथ अपनी जिंदगी हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी जी लो। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM।

विद मी आरजे वैष्णवी। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लायंस डे के बारे में। लायंस के हिसाब से एक मोटिवेशन तो मिलता है हमें, क्या बोलते हैं कि दोस्तों, लायंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंस, पेशेंस, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायन जब हंट करता है तो पूरी प्लानिंग के साथ करता है। यह हमें सिखाता है कि सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजी भी ज़रूरी है। आज का मोटिवेशन क्या है? रॉर सो लाउड दैट योर फियर्स बिकम साइलेंट। लायन की दहाड़हट कितनी दूर तक सुनाई देती है? आपको पता है कितनी दूर तक सुनाई देती हैं? तो पता है तो बता दीजिएगा हमें व्हाट्सएप नंबर पर 04023234822 पर। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत कल रात यानी 14 अगस्त 2026 को आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। सामाई सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर उर्दू प्रोग्राम नए रंग में।

Welcome back to Akashavani, Hyderabad, 101.9 FM Rainbow, with me RJ Vaishnavi, और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब। यस, मैंने कहा है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। यस, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैंने उसको रिप्लाई भी किया था। यस, सही जवाब हम अब जानेंगे। Roar so loud that your fears become silent. Yes, lion की दाहड़ कितनी दूर तक सुनाई देती है। शेर की रोर यानी दाहड़ लगभग 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इमेजिन कीजिए, बिना मोबाइल फोन और बिना इंटरनेट के भी लायन अपनी टेरिटरी का मैसेज इतनी दूर तक पहुंचा देती है। Yes, दोस्तों, आज हम एक कॉल करने के लिए नेटवर्क ढूंढते हैं, लेकिन लायन की नेटवर्क नेचुरल है और रेंज ही 8 किलोमीटर्स है। नेचुरल नेटवर्क रेंज 8 किलोमीटर्स है, सुन रहे हैं आप? 8 किलोमीटर्स बोले तो कितना दूर। यस, इसीलिए उसको जंगल का राजा भी कहा जाता है कि ना? यस, बोलिए मुझे इस बारे में भी कि आप जानते हैं ये 8 किलोमीटर्स था। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी, और एक मज़ेदार गाना आ रहा है, सुनते रहिएगा।

यस, काला चश्मा, कैसा लगा गाना? यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। हम बात कर रहे थे कि लायन आज का मोटिवेशन है, तो लायन दिन भर क्या करता है? आपको पता है हमारी मम्मियाँ क्यों डांटती हैं हमें? लेजी ऐसे ही पड़े रहेंगे, नहीं तो फ़ोन चलाएंगे, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो यूजफुल ही नहीं है, इसीलिए तो मम्मी पापा गुस्सा करते हैं। तो फिर लायन के मम्मी पापा क्या करते हैं? तो लायन क्या करता है ये पहले बताना चाहिए ना। यस, अक्सर लोग सोचते हैं कि लायन हमेशा शिकार करता है, लेकिन सच ये है कि लायन दिन के 18 से 20 घंटे तक आराम करता है। हाँ जी, क्या करता है? आराम करता है। क्यों? एनर्जी सेव करना भी सर्वाइवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, समझे? हम भी लायंस हैं। तो मम्मी पापा सुनिए जरा, हम बच्चे भी लायंस हैं, क्योंकि हम 18 से 20 घंटे तक आराम कर सकते हैं लायन की तरह। यस, सो लाइफ लेसन क्या है? हर वक्त भागना ही प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, कब रेस्ट करना होता है ये भी समझना ज़रूरी है। सो टेक रेस्ट बी लाइन। आपका प्रोडक्टिविटी क्या है? आपने हमारे साथ शेयर करिए, आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि आप रेस्ट करते वक्त? यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना रेडी है, सुनिएगा।

വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആകാശവാണി ഹൈദരാബാദ് 101.9 FM റെയിൻബോ വിത്ത് മീ ആർ ജെ വൈഷ്ണവി. ഓർ ആ ബാബാത് ഹം ബാത് കരേംഗേ ലയൻ കി ടീം കാ നാം ക്യാ ഹൈ. ലയൻ അക്കേല നഹീ രഹതാ നാ, ഉൻകാ ഗ്രൂപ് കാ നാം ഹൈ പ്രൈഡ്. പ്രൈഡ് കഹാ ജാതാ ഹൈ. ഏക് പ്രൈഡ് മേ കഹീ ലയനസസ്, കപ്സ് ഓർ കുച്ച് മേൽ ലയൻസ് ഹോതേ ഹൈ. യേ വൈൽഡ് ലൈഫ് കെ സബ്സേ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫാമിലി സിസ്റ്റംസ് മേ से एक माना जाता है. हाँ जी, वाई इज लायन कॉल्ड किंग ऑफ जंगल? इंटरेस्टिंग बात यह है कि लायंस ज़्यादातर ग्रासलैंड्स और सवानास में रहते हैं, डेंस जंगल में नहीं. फिर भी उन्हें किंग ऑफ जंगल कहा जाता है. रीज़न पता है आपको? हाँ जी, रीज़न है कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, फियरलेस पर्सनैलिटी, पावरफुल रॉर. ये टाइटल उनकी पर्सनैलिटी की वजह से मिला है. लायनेस द रियल हंटर. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पता है आपको? प्राइड में शिकार करने के नाम ज़्यादातर लायनेसेस करती हैं. फीमेल लायंस टीम वर्क के साथ हंटिंग करती हैं. मेल लायंस प्राइड की प्रोटेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है. हर सक्सेसफुल टीम के पीछे टीम वर्क होता है और लायंस की दुनिया भी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है. आप इस बात से सहमत हो? हाँ जी, सहमत हो तो मुझे बताइएगा और सहमत ना हो तो भी बताइएगा कि क्यों नहीं हो. यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

एक एनर्जेटिक गाना है जी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लायंस डे के बारे में। तो लायंस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी मूवीज़ में, वो इंडियन मूवीज़ हो या वर्ल्ड वाइड मूवीज़ हो। आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी मैं लायंस इन मूवीज एंड स्टोरीज के बारे में। बचपन में हम सब ने लायन को कार्टून्स और मूवीज में देखा है। पॉपुलर एग्जांपल्स द लायन किंग। सिम्बा की कहानी ने दुनिया भर के बच्चों को लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज का मैसेज दिया। लायन आज भी ब्रेवरी और डिग्निटी का यूनिवर्सल सिंबल माना जाता है। यस, हाँ कि ना जी? बता दीजिएगा मुझे सिम्बा के अलावा और क्या क्या कार्टून्स पसंद है आपको? लायंस जो है वो कार्टून्स। या सुनते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

जय जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे माँ। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो, बतनी आरजे वैष्णवी। लायन कभी अपनी पहचान साबित करने की कोशिश नहीं करता है, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। यस, लायन को क्यों समझाना है किसी को? आप भी कभी भी किसी को ना समझाइए और आपने आप रहिएगा कि ये कोशिश करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हार्ड वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परसिस्टेंस, कॉन्फिडेंट, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर कभी भी अपने आप को लो मत करिएगा। यही लेसन, लाइफ लेसन है लायन के साथ। दोस्तों, वर्ल्ड लायंस डे सिर्फ लायंस के बारे में जानने का दिन नहीं है, ये प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझाने का भी दिन है। शेर हमें साहस, एकता, लीडरशिप और प्रकृति के साथ संवेदनशील संबंध बनाना सिखाता है। जब जंगल सुरक्षित होगा तभी प्रकृति भी सुरक्षित होगी, और जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। वर्ल्ड लायन डे, 10th अगस्त, रेस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट नेचर, सेव लायंस। यस, अगला कुछ देर हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में भी जानेंगे। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो, विद मी आरजे वैष्णवी।

0: Yes, welcome back to Akashwani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. हम बहुत सारे बातें कर रहे हैं और अब आ गया है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में बताने के लिए. इमेजिन करिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी गाड़ी का फ्यूल किसी खेत से आ सकता है या फिर किचन की यूज्ड कुकिंग ऑयल से बन सकता है तो शायद आप हैरान हो जाएंगे. यही है बायोफ्यूल की दुनिया. बायोफ्यूल नेचर से आता है और दोबारा बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है. वॉट एग्जैक्टली इज़ बायोफ्यूल? बायोफ्यूल वो फ्यूल है जो बायोलॉजिकल मटीरियल से बनता है, यानी कि शुगरकेन, कॉर्न, एग्रीकल्चरल वेस्ट, यूज्ड कुकिंग ऑयल, एनिमल वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यूज, इसके कॉमन फॉर्म्स हैं. बायो एथेनॉल, बायो डीजल, बायो गैस, कंप्रेस्ड बायो गैस. आपको ये इस बारे में पता है? पता है तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको, आपके घर में बचा हुआ कुकिंग ऑयल फ्यूचर में व्हीकल फ्यूल भी बन सकता है. यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाया जा सकता है, इससे पोल्यूशन भी कम होता है और वेस्ट मैनेजमेंट भी बेटर होता है कि ना? यस, आप मुझसे शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं वेट करूँगी. और आ रहा है एक अमेजिंग ब्यूटीफुल सा गाना. मैं कहूँ कि ये मेरे दिल का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, आप भी सुनिएगा. स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विथ मी आरजे वैष्णवी.
1: Let's start the fun!

0: ये मौसम का जादू है मितवा। यस, मौसम का जादू क्यों है? इस महीने अगस्त है, इस महीना अगस्त है, और अगस्त में क्या होता है? बरसात, बरसात, बरसात होता है। हाँ जी, बरसात का मौसम किस किस को पसंद है? हर कोई को पसंद है ना। यस, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे हमारा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में। व्हाई डज द वर्ल्ड नीड बायोफ्यूल्स? आज दुनिया के सामने तीन बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं: क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। बायोफ्यूल्स इन तीनों चैलेंजेस को एड्रेस करने में मदद करते हैं, कार्बन एमिशंस कम करते हैं, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करते हैं, क्लीनर एनवायरनमेंट एंड फार्मर्स की इनकम में सपोर्ट करते हैं। इंडिया में बायोफ्यूल्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है, इसीलिए भारत को बायोफ्यूल सेक्टर में तेजी से काम कर रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के थ्रू पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम हो और पोल्यूशन भी कम हो। हाँ जी, यस, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि भारत के किसान भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। इसके बारे में आप जानते हो तो मुझे बता दीजिएगा। और आ रहा है एक ब्यूटीफुल सा गाना, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।
1: छोड़ कर

यस, अभी दिल बरा नहीं, अभी ना जाऊं छोड़ कर, ये दिल अभी बरा नहीं। आपने ये बात किसी को बताया है अपनी लाइफ में, या किसको बताया है मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़कर सुनाऊंगी हम सब रेनबो फैमिली को। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो, विद मी RJ वैष्णवी। और ये गाना अभी ना जाओ छोड़कर, ये गाना 1961 हम दोनों मूवी से आया है। उतना पुराना गाना अब भी ट्रेंडिंग में है। अब भी कहीं जेन जी हो या जेन अल्फा हो, जेन मिलीनियल्स हो, किसी भी जनरेशन को पसंद आने वाला गाना है अभी ना जाओ छोड़कर। इसमें कास्ट करा है देव आनंद जी और साधना जी को। कितने सुंदर थे, कितने चटपटे, देवर टू क्यूट फॉर दिस मूवी। 1961 में आया सो गाना। आपको और कौन कौन से गाना पसंद है मुझे बता दीजिएगा, मैं प्ले कर दूंगी। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो, विद मी RJ वैष्णवी। और आ रहा है एक मॉडर्न सा गाना, सुनते रहिएगा।

नमस्ते, हेलो, आदाब। वेलकम बैक टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। और हम बात कर रहे थे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में। एक लीटर बायोफ्यूल बनाने के लिए कभी कभी ऐसे रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो अदरवाइज वेस्ट हो जाते हैं, यानी वेस्ट टू वेल्थ आज के सस्टेनेबिलिटी एरा का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, वेस्ट टू वेल्थ, इसमें ही बहुत क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल मैसेज है। दोस्तों, जब हम फ्यूल के बारे में सोचते हैं तो अक्सर पेट्रोल पंप या ऑयल रिफाइनरी याद आती हैं, लेकिन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमें याद दिलाता है कि एनर्जी सिर्फ ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि खेतों में, प्रकृति में और हमारे नज़रों में की वेस्ट, रोजमर्रा की वेस्ट में भी छुपी हुई है। यस, ये है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में। और हम अगले कुछ घंटों में ये नेशनल लेजी डे और बोनाले जातिरा के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

कलंक नहीं इश्क है पिया। यस, आपको ये मीनिंग पता है? कलंक नहीं इश्क है पिया। यस, इसके बारे में भी बात करेंगे हम हमारे शो में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। और हम आप स्टार्ट करेंगे नेशनल लेजी डे के बारे में। नेशनल लेजी डे नाम में ही कुछ अलग अलग सा है ना। आज का दिन थोड़ा अलग है, थोड़ा मज़ेदार और शायद हम सब से जुड़ा हुआ भी है। आज है नेशनल लेजी डे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सच में आलस को सेलिब्रेट करने का भी कोई दिन होता है? जी हाँ, लेकिन नेशनल लेजी डे का मतलब सिर्फ पूरा दिन सोने या कुछ ना करने के लिए नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी स्लो होना, रेस्ट लेना और खुद को रिचार्ज करना भी बहुत ही ज़रूरी है। हमने अभी अभी कहा था कि लायंस भी 18 to 20 hours दिन में सोते हैं। दे विल बी रेस्टिंग, रेस्टिंग फेज है उनका। रेस्टिंग का मतलब ऐसे ही पड़े रहना नहीं। लायन से हम एक लाइफ लेसन लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ रेस्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये ही कॉन्सेप्ट नेशनल लेजी डे का भी है। या सुनते रहिएगा आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णव।

0: FM Rainbow
1: अरोड़ा लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का

0: मुख्य आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी।

0: लगाते हैं और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament were adjourned till 12 noon following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. In the Lok Sabha, when the house met at 11 a.m., the presiding officer N.K. Premachandran tried to take up the question hour, but opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over alleged police action during students' protests. In the Rajya Sabha, the ministers laid papers of their concerned ministry on the table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour, but due to continued sloganeering, the chairman adjourned the House till 12 noon. Proceedings have now resumed in both houses. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete.
0: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
2: India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Vikasit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervour. Tiranga rallies were organised in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Manipur, Chief Minister Yamnam Khemchand participated in the campaign from his residence. He urged the people to recognize themselves as Indians first, then a Manipuri. The gross merchandise value of the government e-marketplace GeM has increased from 422 crore rupees to over 1 lakh.

यस, आई वुड नेवर फॉल अगेन इन लव। आपने ये बात किसको बताई है? मैंने तो ये बात आई वुड नेवर फॉल इन लव अगेन अंटिल आई फाउंड हर, आई फाउंड यू को स्लीपिंग को कहा है। मैं सोती रहती हूँ, मम्मा डांटती रहती हैं, क्यों बेटा क्यों ऐसा करना बोल के, बट आई विल नेवर नेवर अगेन फॉल इन लव विथ यू बोल के बोलते ही सो जाती हूँ। आप ऐसा करते हैं आपके मम्मी पापा के साथ? यस। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी RJ वैष्णवी। हम बात कर रहे थे नेशनल लेजी डे के बारे में। बहुत लोग इन दोनों एक एक समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेजी एंड रेस्टिंग। लेजी ज़रूरी काम को बिना वजह पोस्टपोन करना, वही रेस्टिंग का बात हो जाए तो काम के बाद एनर्जी रिकवर करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में रेस्ट लेना वीकनेस नहीं बल्कि सेल्फ केयर होता है। हम बहुत सुनते हैं कि सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं बोल के, यस वही सेल्फ केयर फेस है। अराउंड द वर्ल्ड हर देश में लोग बिजी रहने की बात करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। लॉन्ग वेकेशंस लेते हैं, हॉबीज परस्यू करते हैं और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसमें से एक मैसेज हम भी दे सकते हैं, लाइफ सिर्फ डेडलाइंस के लिए नहीं, लाइफ लाइंस के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। जी, आपने कभी जॉब को लॉन्ग लीव दे के लॉन्ग लॉन्ग वेकेशंस को गए हैं? मैं तो गई हूँ, आप भी बता दीजिएगा आपका किधर गए हो, क्या कहाँ गए हो और कैसे गए हो बोल के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो और एक मेल

0: वेलकम बैक टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। नमस्ते, हेलो, आदाब। हम बात कर रहे थे नेशनल लेजी डे के बारे में। व्हाई डू वी फील लेजी समटाइम्स? कभी कभी लेजीनेस का रीज़न आलस नहीं होता है। यस ऑफ कोर्स, हो सकता है लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, बर्नआउट, ओवर थिंकिंग, मोटिवेशन की कमी। इसलिए हमेशा खुद को जज करने के बजाय रीज़न समझना ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊँ आपको, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली एनर्जी सेव करना चाहता है, इसी वजह से हम लिफ्ट को स्टेयर से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शॉर्टकट ढूंढना हमारे ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है। यही यानी थोड़ा सा लेजी होना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। सुनते रहिएगा, बना ही रहेगा हमारे साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी, और एक बहुत ही डिनचैक गाना आ रहा है। स्टे ट्यून्ड।
1: दिस इज द ट्रिब्यूट टू तलाइवा।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

वेलकम बैक टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। और हम बात कर रहे थे नेशनल लेजी डे के बारे में। तो फेमस लेजी कैरेक्टर्स पता है आपको? फर्स्ट लिस्ट में आते हैं गारफील्ड। खाना और सोना गारफील्ड की फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं। विनी द पू, पू को हनी और रिलैक्सेशन बहुत पसंद था। खाना और सोना, खाना और सोना, ये कैरेक्टर्स हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ में सिंप्लिसिटी भी ज़रूरी है। हाँ जी, सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। फनी साइंस, यू माइट बी लेजी, मोबाइल चार्जर तक पहुंचने के लिए भी स्ट्रेच करते हैं। टीवी रिमोट दूर हो तो चैनल चेंज करने का भी मन नहीं करता। अलार्म स्नूज करना एक दिन रिचुअल है, एक डेली रिचुअल है। पानी की बॉटल पास ना हो तो प्यास भी थोड़ी देर वेट कर लेती हैं। सही बात है ना दोस्तों? अगर आप इनमें से तीन चीज़ें करते हैं तो मुबारक हो, आप नेशनल लेजी डे के हॉनररी मेंबर हैं। कंग्रेचुलेशंस। यस, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं हम अगली थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

Welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me, RJ Vaishnavi. So, nature's lazy champions. Wo like two hain basically. Humko two pata hain. Sloth. Pehla wala sloth. Sloth duniya ke sabse slow animals mein se ek mana jata hai. Ye din ka adhiktar samay aaram karte hue baithta hai. Koala. Koalas भी लगभग 18 to 20 घंटे तक सो सकते हैं. नेचर भी कभी कभी हमें स्लो लिविंग का लेसन देती है ना. आपको आपने ये दोनों एनिमल्स को देखा है ज़ू पे? यस, बहुत ही मिलते हैं बड़े बड़े ज़ू पे. यस, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग नथिंग. समटाइम्स नथिंग इज बेटर देन समथिंग. कभी कभी कुछ देर के लिए रुकना भी प्रोडक्टिव हो सकता है. उसका बेनिफिट्स क्या है पता है आपको? स्ट्रेस कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, मूड इम्प्रूव होता है, मेंटल हेल्थ बेटर होती है, डिसीशन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होता है. इससे हम पॉजिटिव मैसेज भी ले सकते हैं. लाइक नेशनल लेजी डे का असली मैसेज है, हर वक्त बिजी रहना ज़रूरी नहीं, हर वक्त प्रोडक्टिविटी दिखाना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूलना भी ठीक नहीं. बैलेंस ही सबसे बड़ी कला है ना. बैलेंस से बहुत कुछ सामना करने के लिए स्ट्रेंथ मिलती है. ये सुनते रहिएगा, हमारे साथ बनाए रहिएगा. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी. और एक स्लो गाना आ रहा है नेशनल लेजी डे को मनाने के लिए. एक स्लो मीठा गाना सुना रही हूँ. यस, स्टे ट्यून्ड.

0: ஸ்ரீராம் லிரிக்ஸ், ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக், ரக்ஷிதா சுரேஷ் பாடின பாட்டு விண்ணாரு ஃப்ரம் த மூவி பெதி. 5:44 அண்ட் ஸ்டுடியோ கிளாக் மீரு விண்டுனாரு எஃப்எம் ரெயின்போ 101.9 ரெயின்போ ஜீவிதம் ரங்குலமயம்.
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत कल रात यानी 14 अगस्त 2026 को आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर. सामाई सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 एफएम रेनबो पर उर्दू प्रोग्राम नैरन में.
0: ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో, సమయం 5:45. ఇది మన చట్టం. హోమ్ లోన్ రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఏజీఎం హరీష్ గారితో పరిచయం వింటారు. పరిచయకర్త కార్యవర్తి గోపిశెట్టి.

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। अभी आप मेरी रेडियो साथी दीपा से रिमझिम हैदराबाद प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। सामाइन, स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 24 सेकंड हुआ चाहते हैं। पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नरंग।
1: सच्चाई एक

0: लेकिन देर तक नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस पर अमल करते हैं कि वक्ती तौर पर फ़ायदा हासिल कर लें। सच्चाई एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के दिल दिमाग को मुनव्वर करती है। यह इंसान को अंदरूनी सुकून और बैरूनी इज़्ज़त अता करती है। एक सच्चा इंसान ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है बल्कि अपने किरदार के मुस्बित माहौल को भी खुशगवार बनाता है। हमें चाहिए कि हर हाल में सच बोलें, ख्वाह वो हमारे खिलाफ ही क्यों न हो। सच्चाई पर कायम रहना आसान नहीं, लेकिन यही रास्ता हमें अल्लाह के करीब ले जाता है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करता है।
1: सामईन, अभी आप हरफ ताबिंदा समात फरमा रहे थे। तहरीर और पेशकश नूर अफशां की थी। सामईन, बज़्म नैरंग को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं आज का खसूसी प्रोग्राम बज़्म नज़्म। बज़्म नज़्म के तहत हम मुमताज़ शायर वली मोहम्मद ज़ाहिद का कलाम समाप्त फरमाएंगे।

0: बज़्म निज़म के तहत अभी आप जनाब वली मोहम्मद ज़ाहिद का मुतफरिक कलाम समाअत फरमा रही थी।
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 14 अगस्त 2026 को रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। सामाई सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर उर्दू प्रोग्राम नैरन में।
0: सामाइन बज़्म निरंग को जाय रखते हुए आइए सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा। आइए इस प्रोग्राम के तहत हमने आज का उन्वान लिया है ज़िंदगी, ज़िंदगी का सफ़र फिल्मी गीतों के संग। तहरीर और पेशकश डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्लाह ख़ान की है। ज़िंदगी का सफ़र फिल्मी गीतों के संग, मौसीकी इंसानी रूह की ग़िज़ा है और जब ये शायरी और फिल्मी दास्तान का हिस्सा बनती है तो ज़िंदगी के हर रंग को खूबसूरती से निखार देती है। बरेसग़ीर के फिल्मी गीत सिर्फ तफरी का ज़रिया नहीं रहे बल्कि ये आम इंसानी ज़िंदगी की खुशियों, गमों, उम्मीदों, जदोजहद और फ़लसफ़े हयात के तर्जुमान रहे। फिल्मी नगमे नगारों ने लफ्ज़ों की ऐसी माला पुरोई है कि जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई, रहबरी और दिलजोई करती नज़र आती है।

0: कभी तो हंसाए।
1: दोस्तों, जिंदगी भी एक अजीब और गरीब सफर है। कभी धूप, कभी छांव, कभी मुस्कुराहटें, तो कभी खामोश आंसू। लेकिन इस खूबसूरत सफर में जो चीज़ हर पल हमारे साथ रहती है, जो हमारे जज्बात को ज़बान देती है, वो है मौसीकी। फिल्मी नगमे सिर्फ तफरी नहीं होते, ये हमारी ज़िंदगी का आईना होते हैं। आज हम ज़िंदगी के इन्हीं मुख्तलिफ मोड़ को फिल्मी गीतों की रोशनी में महसूस करेंगे।

0: जिंदगी के सफर का सबसे पहला और खूबसूरत पड़ाव होता है बचपन। न कल की फिक्र न आज का गम, बस एक बेफिक्री और तितलियों के पीछे भागने वाली उम्र। जब बचपन की बात हो तो भला वो नगमे कैसे भूल सकते हैं जो आज भी हमें हमारी बचपन की गलियों में वापस ले जाते हैं। ज़िंदगी का इब्तदाई दौर यानि बचपन मासूमियत बेफिक्री से इबारत होता है। फिल्मी गीतों ने इस दौर को भी यादगार बनाया है।
1: लकड़ी

बचपन गुजरता है तो जिंदगी कदम रखती है जवानी की दहलीज पर, उफवाने शबाब में। ये वो उम्र है जहां ख्वाब बड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कनें किसी का नाम लेने लगती है, यानी मोहब्बत का मौसम का आगाज होता है। मोहब्बत चाहे शुरुआती शरारती हो या किसी के इंतज़ार की तड़प, फिल्मी नगमे नगारों ने इस एहसास को लफ्ज़ों में ऐसा पुरो दिया है कि हर दिल बोल उड़ता है। हाँ, ये मेरा ही किस्सा है। जैसे ही इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, ज़िंदगी में मोहब्बत, ख्वाब और उमंगों का रंग घुल जाता है। जवानी के इब्तदाई एहसास मोहब्बत की पाकीज़गी का हसीन इजहार होते हैं।

मोहब्बत की हसीन वादियों से आगे बढ़ें तो ज़िंदगी का असल मैदान आता है, जद्दोजहद, जिम्मेदारियां और इम्तिहानात। ज़िंदगी हमेशा सीधी सड़क नहीं होती, इसमें मोड़ भी आते हैं और मुश्किल और पेचीदा राहें भी। कभी मरासिम, कभी तलखियां, कभी तन्हाइयां, कभी हिजर और जुदाई। लेकिन फिल्मी गीतों ने हमें सिखाया है कि गिरकर संभलने का नाम ही तो जिंदगी है।

जिंदगी बतौर नागुजीर सफ़र। फिल्मी मौसीकी में ज़िंदगी को अक्सर एक सफ़र की अलामत से तशबीह दी गई है। एक ऐसा सफ़र है जिसमें मंजिल से ज़्यादा रास्ते की अहमियत होती है। फिल्मी शायरों ने इंसान को ये बावर करवाया है कि हालात कैसे भी हो, ये सफ़र जारी रहता है। जैसे ज़िंदगी का सफ़र, ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं और कोई जाना नहीं। ये गीत ज़िंदगी की पुरअसरार कैफियत, इसकी गैर यकीनी नौइयत को शानदार अंदाज में उजागर करता है।

दोस्तों, सच तो यह है कि ज़िंदगी की कोई मंजिल नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफ़र का नाम है। इसमें खुशी हो या गम, कामयाबी हो या नाकामी, हर लम्हा एक सबक है, हर दिन एक नया मौका। उम्मीद का दामन कभी हाथ से ना छोड़े। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है, इंसान को एहसास होता है कि गुज़रे हुए कल की फ़िक्र छोड़कर आज के इस लम्हे को जीना ही सबसे बड़ी दानिशमंदी है। कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी के इस सफ़र में दूसरों के लिए सिर्फ मुस्कुराहटें हों। इस सदाबहार नगमे के साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा बनकर बयान करता है।

इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज हमारे आज के जिंदगी का सफर फिल्मी गीतों के संग का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आज का ये सफ़र आपको दिल छू गया होगा। फिल्मी गीतों ने जिंदगी के किसी भी पहलू को तिशना नहीं छोड़ा, बचपन की मासूमियत से लेकर बुढ़ापे की संजीदगी तक और प्यार के जुनून से लेकर जुदाई तक, हर एहसास का मदावा इन गीतों में मौजूद है। फिल्मी नगमों में हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी खुशी और गम का एक हसीन इम्तिजाज है। असल दानिशमंदी यह है कि इंसान हर लम्हे को कबूल करे, मुस्कुराए, आगे बढ़ता रहे, अपना और अपने प्यारों

0: का खूब ख्याल रखें, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त को अब आप इजाजत दीजिए। गीत सुरीले गाते जा के तहत अभी आप फिल्मी नगमे सुन रहे थे। आज का मौजू था जिंदगी।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
0: समय बज़्म-ए-नगमे को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं कुछ गज़लियात।

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। फासला हमेशा दूर नहीं होता, कभी कभी ये दिलों को करीब भी कर देता है। रिश्तों में थोड़ा सा फासला इंसान को अपनी और दूसरों की कदर सिखाता है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त साथ रहना ही मोहब्बत हो। असल मोहब्बत वो है जो दूरी में भी कायम रहे। इसलिए फासले को आजमाइश समझें, ना कि इख्तिताम, क्योंकि सच्चे रिश्ते फासले से कमज़ोर नहीं होते बल्कि मजबूत होते हैं।

हुकूल इबाद इंसानियत का वो जौहर है जिसे उसे कामयाबी की वो कुमन पर ले जाता है जहाँ से फरिश्ते भी रश करते हैं। लिहाजा हुकूल इबाद यानि अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए और कामयाबी की कलीद पाइए। ये आकाशवाणी हैदराबाद है FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज़ की घड़ी में

0: संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Electronic signatures.
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: విరచిత విష్ణుస్తుతి 6:35 పొలం పనులు, 7:00 భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా సమాచార లేఖ అందిస్తారు ఆర్ హరికృష్ణ. 7:15 ఉదయతరంగిణిలో ప్రపంచ ఉక్కు దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం, ఆ తర్వాత ఆరోగ్య జీవనం. ఆరోగ్యకరమైన జీవితం సిస్టమేటిక్ నిర్ధారణ అంశం గురించి డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి పెద్దగా
1: స్పెసిఫిక్ క్వెరీస్ యూ కెన్ కాల్ అస్ ఆన్ 2331-4444 ఆర్ 2331-0481 అండ్ 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Niharika Bhuvania with you this evening with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
2: Namaskar. Market Bandar ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ki is karyakram mein hamesha ki tarah hum hazir hain. Lekin aaj somvar hai aur aaj ke din apne karyakram mein hum aapko bhi kiya karte hain aamantrit humse sawal poochne ke liye. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल यदि आप पूछना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2331-4444-2331-0481 या फिर 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को या जो मोबाइल फोन से फोन करना चाहते हैं उन्हें दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करना होगा. बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं. हमसे खबरों के पर चर्चा के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी नमस्कार.
3: नमस्कार मनोज जी.
2: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका.
1: Well, let's take a look at the headlines first for this evening. Benchmark domestic indices end on a flat note. Sensex adds 43 points. Nifty settles at 24,584. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise.
2: बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए आज घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 43 अंक उछला. निफ्टी 24,584 दर्ज हुआ. संसद ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया आश्वस्त, कहा छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
1: And before we move forward, a small note for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
2: और अब घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 43 अंक बढ़कर 78,542 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक बढ़त के साथ 24,584 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की मांग में मिला जुला रुख दिखा है. एक और खरीदारी से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.6% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.3% की गिरावट भी हुई.
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड ऑन अ फ्लैट नोट टुडे. द सेंसेक्स रोज 43 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,542. The Nifty added 13 points to settle at 24,584. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained over 0.6%, while the Small-Cap 100 Index dipped nearly 0.3%. Earlier, the benchmark indices opened slightly up and briefly slipped into negative territory. However, the Sensex and Nifty recovered their initial losses and traded in positive zone for most of the range-bound session. Despite a slight pullback in the final hour of trading, both indices ended marginally higher following the closing auction session.
2: नजर डालें सेंसेक्स पैक के प्रदर्शन पर, तो 30 में से 19 कंपनियों को

0: वो आज फायदा हुआ है। सबसे अधिक फायदा टाइटन कंपनी के शेयरों में देखने को मिला, जिसके भाव 3.1% बढ़कर बंद हुए। बजाज फाइनेंस को 1.9% का और बजाज फिनसर्व के शेयर 1.1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही भारतीय स्टेट बैंक, जिसके शेयरों में 2.2% की कमी देखने को मिली। इटर्नल के शेयर 1.6% नुकसान में रहे। एनटीपीसी को 1.5% से अधिक का घाटा उठाना पड़ा।
1: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, realty advanced 1.6%, consumer durables rose 1.2%, and capital goods gained almost 0.5%. In contrast, PSU banks dipped 1.3%, housing finance shed 0.6%, and mid-small private banks' quality tilt lost over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,226 companies declined, 2,225 advanced and 194 remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ, 95.29 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आज की गतिविधि पर यदि आपकी हम प्रतिक्रिया समझना चाहें तो बताएं कि क्या सब बाजार में रहा।
2: आज देखिए बाजार जो है थोड़ा फ्लैट रह रहा है। अगर आप देखें अर्निंग सीजन जो है काफी अच्छा चल रहा है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा, लेकिन ऑयल और जियोपॉलिटिकल जो अनिश्चितता बनी हुई है उस वजह से थोड़ा सा वो वे कर रहा है बाजार के ऊपर, तो ये इसीलिए थोड़ा फ्लैट दिख रहा है।
1: एंड विद दैट वी आल्सो हैव आवर फर्स्ट कॉलर दिस इवनिंग, डॉक्टर प्रफुल्लित बिश जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली। गुड इवनिंग डॉक्टर प्रफुल्लित, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ मार्केट मंत्रा एंड इट्स इमेंस प्लेजर टू गेट द इनसाइटफुल नॉलेज। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, आई एम अ न्यू इन्वेस्टर इन टर्म्स ऑफ SIP. So I recently started 2,500 rupees four SIPs in sectoral this thing. The one is Nifty index funds, small index and mid cap and large cap. So is it the right strategy? Because I was reading about it. Someone said that this is not a right strategy to go, or maybe 10,000 in one SIP would have been a better choice. So what would you suggest me? What should I read so that, I'm looking at long time duration, for example 30 years or 35 years delay I'm trying to invest. Yeah, thank you ma'am.
2: Thank you Dr. Bisht, and a pleasure to have you on the show, and it's nice to know that you are a regular listener. See, we always advise investors to diversify, to have a very balanced portfolio. While like you've said, you have invested in four SIPs and you have tried to balance it out, but you also have to see there is a cost of investment involved. So if you're putting in small amounts in four SIPs, you are also incurring costs at four different places. So that also adds to your cost of acquisition. So you have to see how you can sort of balance it and whether it is more cost effective to do it at invest in two products or invest a consolidated sum in in one product. But that is something you'll have to figure it out. It is advisable to have a balanced portfolio, but you also have to see the costs involved.
0: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमित। अमित जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
4: हाँ नमस्कार सभी को। शिखा मैडम से प्रश्न ये है मैम कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईटी कंपनी अभी भी अंडर प्रेशर में है, बट दिग्गज कंपनी है, नाम तो नहीं ले सकते प्रोग्राम में, ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है मैम, और वो पिछले दिसंबर 2025 से लेकर के जून तक वो 46% माइनस में थी, यानी कि डाउन चल रही थी, ठीक है मैम। हेलो
2: जी जी अमित जी पूछे अपना सवाल।
4: और जून के बाद उसने अपने लोअर लेवल से 20% की रिकवरी हुई है, तो क्या हमारी आईटी कंपनी पूरी तरह एआई के जो चैलेंज से उबरने के लिए तैयार हो चुकी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो भी

0: समस्या आ रही थी, तो क्या उसके जो है समस्या खत्म हो चुकी है या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं अभी भी? धन्यवाद
1: अमित जी। देखिए, टेक क्षेत्र जो है अभी उस पर ये अनिश्चितता जो एआई की वजह से हो गई थी, ये अभी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत क्लैरिटी आई है कि आगे कितना असर हो सकता है हमारी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये माहौल अब बन रहा है कि ये हो सकता है एक बहुत बड़ा बबल हो। हमारी जो कंपनियां हैं टेक क्षेत्र की, वो भी तैयारी कर रही हैं कि वो किस तरह से इस नई चुनौती को हैंडल कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि खतरे के बादल पूरी तौर से छट गए, क्योंकि अभी एआई का पूरा असर आया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि एआई आने से हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, अगर वो अपने आप को तैयार कर लेती हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आए नई व्यवसाय के तहत।
2: यहाँ पर दीपशिखा जी थोड़ा समझना चाहेंगे श्रोताओं के नज़रिए से कि अक्सर जब कोई एक नई तकनीक आती है और ऐसी तकनीक जो समझ में ना आने लायक हो, तो थोड़ा सा भय होता है, आशंका होती है। जैसे कंप्यूटर का ही जब आगमन हुआ था तो चिंताएं थी कि कंप्यूटर नौकरी खा जाएगा, इसी तरह एआई बहुत सारे कामों को निश्चित रूप से आसान बना दे रहा है। तो यह रोजगार के अवसर कहाँ दे रहा, कैसे इसका जो नया स्वरूप निकलेगा उसमें ये सहायक कैसे साबित होगा, आशंकाओं के बादल से निकलने के सूत्र के रूप में समझना चाहेंगे इसे।
1: मनोज जी, देखिए, एआई जो है एक नया क्षेत्र आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें एआई जो है जिस तेजी से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, एआई खुद ही रेलेवेंट नहीं रहेगा, इतना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा चीज है कि एक कॉस्ट है एआई की। अगर आप ह्यूमंस को रिप्लेस करना चाहते हैं एआई से, तो वो कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है कंपनीज के लिए आज की तारीख में। हो सकता है वो कॉस्ट आगे चल के कम हो जाए, लेकिन ये जो मैनेज करना है एआई का इंटरफेस जो है कंपनीज के साथ या ह्यूमंस के साथ या जो भी अडॉप्शन है, उसके अडॉप्शन में भी आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो ये है कि ये एआई जो है हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज और नए रोजगार के अवसर पैदा करे। हम देख रहे हैं किस तरह टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ और उस तरह से व्यवसायों का जो चरित्र है वो किस तरह से बदल रहा
2: जी,
1: है
2: जी, जी।
1: तो उम्मीद की जाती है कि नए अवसर भी पैदा होंगे
2: जी।
3: एंड विद दैट लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्टोरी फॉर दिस इवनिंग। Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. The ordinance was promulgated with the objective of mitigating the impact of external economic shocks. The bill further exempts foreign institutional investors and the Bank for International Settlements from paying income tax on interest earned on investments in government securities. The bill further amends the Income Tax Act to exempt income earned by certain foreign companies from the sale of rough diamonds in a notified special zone. Replying to the discussion, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, "No merchant discount rate framework has been finalized." She assured that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI.
4: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. Let this be clear. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges.
3: So, Deepshika, a small comment from you on this. Given that UPI today has assumed massive proportions in the country, and even the smallest transaction requires UPI now, not requires maybe, but is the default go-to mechanism. And with that, the volume of transactions has also improved quite a bit. It has also increased multifold. So, your comment on this bill, on this law, and how is it going to impact the economy overall?
1: Niharika, if you heard the finance minister, she's clearly saying that this is an enabling amendment, mm-hmm. which will enable the government to sort of pave the way for, imposition of

0: MDR. Now, the thing is, MDR, why is it required? We've seen how digital payment industry, the entire sector has grown. It has grown in volumes. So how do the companies which support this growth or support these transactions also sort of survive? They also need to make some money on it.
1: Of course.
0: They also need to invest in technology to further improve, interface with customers. So, which is what a levy of MDR will allow. And the government has assured that, smaller transactions, or smaller merchants, they would not face this charge. So this whole expansion, which has sort of happened, you now have vegetable vendors or anyone even taking small payments over, UPI or phones, that would still be facilitated. So government has assured that that would be taken care of. So I think that fear should not be there that, MDR will, sort of raise the cost of digital transactions. Not all transactions will attract it. Smaller ones will be sort of kept out, and traders would also, smaller traders would be spared.
1: Very well.
2: आइए आगे बढ़ाएं कार्यक्रम का सिलसिला और आमंत्रित करें अपने एक नए श्रोता नितिन जी को. नितिन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
3: नमस्कार सर.
0: नमस्कार नितिन जी.
3: जी, दीपशिखा मैडम को भी नमस्कार.
0: जी नमस्ते.
3: मैम, मेरा एक मार्केट के बारे में एक छोटा सा सवाल है. जैसे मतलब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करता है तो जो डीमैट अकाउंट जो भी प्रोसीजर है वो कर देता है, तो क्या इसके लिए मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करना पड़ता है इससे पहले, ऐसा कोई नियम है? जैसे मार्केट में एंटर करता है आदमी तो फाइनेंशियली एक्टिविटीज बढ़ती है, जैसे कैपिटल गेन्स हो गया, टीडीएस वगैरह वगैरह, तो क्या ये जरूरी होता है? जो टैक्सेबल जो आदमी उसका इनकम टैक्सेबल नहीं है, ऐसे आदमी अगर मार्केट में एंटर करता है और अपना डिमांड अकाउंट खोल के चालू करता है तो क्या? थैंक यू मैडम.
0: नितिन जी देखिए, आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो तब आपको कोई ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है. लेकिन अगर आपकी आय नहीं भी है और आप बाजार में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसमें आपका ऐसा कोई गेन भी नहीं आया, आपका कर नहीं बन रहा है, देनदारी नहीं बन रही, तो भी आप एक निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है. लेकिन अगर आपके गेन्स हो रहे हैं, कैपिटल गेन्स हैं, तो उसके लिए तो आपको रिटर्न फाइल करना ही होगा.
2: हाँ, यानी जिस समय आप काम शुरू करने जा रहे हैं उस समय कोई औपचारिकता
0: नहीं है. जी. एंड विद दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टोरी फॉर दिस इवनिंग. India's urban unemployment rate for persons aged 15 years and above rose marginally to 6.7% during the April to June quarter of current fiscal year, from 6.6% in the previous quarter. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, Periodic Labour Force Survey Quarterly Bulletin, unemployment rate in rural areas increased to 4.8% from 4.3% during the fourth quarter of the last fiscal year. Meanwhile, the female urban decreased to 8.7% in the current quarter from 9.1% in the last quarter. The data showed that sectoral distribution of employment continued to exhibit similar structural pattern, with the rural workforce predominantly engaged in the primary sector and the urban workforce concentrated in the tertiary sector.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजनाओं के अंतर्गत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय शुल्क भुगतान चालान जमा कराने की आवश्यकता को, यानी इसकी जो भौतिक प्रति होती है उसे जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 1 अगस्त या उसके बाद किए गए स्वैच्छिक शुल्क भुगतान के लिए निर्यातकों को प्राधिकरण बंद करने के लिए अपने आवेदन के साथ भौतिक रूप से चालान की प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. इस कदम से प्रक्रिया में तेजी आने, अनावश्यक पत्राचार कम होने और डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों में निर्णय लेने में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होने की उम्मीद है.
1: The gross merchandise value of the government e-marketplace

0: has increased from 422 crore rupees to over 1 lakh 55,000 crore rupees in the last decade. This was stated by Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal. In a social media post, Mr. Goyal said that over 12 lakh micro and small enterprises, including more than 2 lakh led by women, and over 42,000 startups are registered on the portal. He further said that the platform has made government markets more accessible to MSCs, startups, women entrepreneurs, and others, while championing the vision of Vocal for Local and Make in India.
1: यहाँ पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. इसे एक उत्साहजनक खबर माना जाए कि एक दशक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है.
2: बिल्कुल मनोज जी, देखिए जेम जो है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत सरकार खरीदी करती है. तो एक तो कागज और सारा जो पहले डिलेज होता था या पेमेंट्स में डिले होता था, अब आप ऑनलाइन जाइए, एक मार्केट प्लेस क्रिएटेड है, जिस डिपार्टमेंट को खरीदी करनी है वो वहां से खरीदी करता है. तो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों की तरफ ये एक कदम था और इसका अडॉप्शन जो है वो काफी बढ़ गया है. तो और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बढ़ गई है. ये अगर आप देखें जो नंबर मंत्री जी ने बताया है, तो जेम जो है सरकार में काफी उसको अडॉप्ट किया जा रहा है.
1: जी जी जी.
0: And just a small reminder for our listeners at this moment, in case you have any market-related queries, you can reach out to us on 2331-4444 or 2331-0481 or 2371-7106. And of course, please add the code 011 before any of the numbers that you're dialing. You must also remember that we do not address stock or company-specific
1: श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हमारा फोन इन कार्यक्रम होता है, यानी आप हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा सवाल. आप हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से जापान में लिवाली तेज रही है. जापान का निक्केई 225 सूचकांक कारोबार के अंत में 2.1% लाभ के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.6% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली.
0: एंड विद दैट वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर हु जॉइंस अस फ्रॉम दिल्ली एज वेल. प्रेमजीत इज ऑन कॉल विद अस. गुड इवनिंग प्रेमजीत, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन.
3: Good evening, all of you, ma'am. My question to the respected Deepshikha ma'am in the regard of, ma'am, when I visited all these ports close to LPG and crude oil, I have seen, ma'am, in Texas, U.S. Built so many LPG terminals, new terminals. So, could we expect that the trade will be impact with our country and our region as well? Thank you, ma'am.
2: मेरा ख्याल है आप क्रूड ऑयल के बारे में जानना चाह रहे हैं. तो क्रूड ऑयल में देखिए काफी समय तक अभी अनिश्चितता जो है और उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि जो मेन सप्लाई क्षेत्र रहा है क्रूड ऑयल का मिडल ईस्ट, वहां पर जो है बहुत अनिश्चितता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और वो अनिश्चितता हट नहीं रही है. तो वो अनिश्चितता जब तक रहेगी तब तक क्रूड ऑयल पर हम प्रेशर देखेंगे कुछ समय तक.
0: So since we spoke of crude oil, it's time to take a look at the next story for this evening. Global crude oil prices edged higher today as Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaei said that the Strait of Hormuz will not reopen until the US continues its naval blockade against Iran. Brent crude was trading 1.4% up at $84.72 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 1.1% higher at $79.02 per barrel when reports last came in.
1: श्रोताओं, आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार. भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य 0.7% की बढ़त के साथ 1,50,641 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी मामूली कमजोरी के साथ 2,31,373 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको दीपशिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद.

0: साथ देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद मनोज जी। Thank you, Niharika.
2: Many thanks for joining us today, Deepshika, on Market Mantra. And before we close, a reminder of the headlines for our listeners. Benchmark domestic indices end on a flat note. Sensex adds 43 points. Nifty settles at 24,584. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. Take care and see you in the next one.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

बिल्कुल, ये प्यार भरी जो रात है, गीतों से भरी जो रात है, वो कहीं नहीं ढलने वाली है। बिल्कुल, आप बनी रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और मैं हूँ आपके साथ ऋतिका।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ आप बने रहिए और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

0: राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। इससे ई वीजा धारक विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि नए बंदरगाहों को शामिल किए जाने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की उपयोगिता में वृद्धि होगी। मंत्रालय ने बताया कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। नए बंदरगाहों को शामिल किए जाने के साथ भारत में ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों को प्रवेश की सुविधा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्ण लाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ नागरिकों ने भाग लिया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 6 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने। इस खामोश रात में जब चारों ओर सुकून की चादर बिछी हो, ऐसे में अगर कोई मधुर गीत कानों तक पहुंच जाए तो फिर क्या कहने। लगता है जैसे रात और भी हसीन हो गई हो और हर धुन दिल को अपने साथ किसी खूबसूरत एहसास की दुनिया में ले जा रही हो।

लिबास फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जीवा फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, कोई चेहरा खामोशी से दिल में उतरता रहे, कोई याद रात की तन्हाई में धीरे से दस्तक देती रहे। कुछ सपने नींद में नहीं आते, वो तो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और हर सुबह दिल फिर उसी ख्वाब को जीने की चाह करता है।

इजाजत फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। प्यास भी जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास है। हर प्यास का बुझ जाना जरूरी तो नहीं। कुछ अधूरी चाहते ही तो दिल को जिंदा रखती हैं। बस यूं ही कतरा कतरा जीते रहिए, कतरा कतरा बहते रहिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 45 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

बसीरा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,

0: विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और व्यवहारिक प्रशिक्षण को मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि रणनीति के तीन प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों की आजीविका है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के छात्रों की छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति सीधे और समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। भारतीय और अमरीकी नौसेना विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ। गीत सुहाने, कुछ ऐसे गीत जो कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचते हैं, जिनकी धुन में बीते लम्हों की खुशबू है, जिनके बोलों में मोहब्बत है, यादें हैं और जिंदगी के अनगिनत रंग हैं।

वक्त फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस एक एहसास होता है जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाता है।

दो बदन फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कभी ठंडी हवा का झोंका, कभी बादलों की छांव, और अचानक दिल कह उठता है। कुछ लोग दूर होकर भी कहां दूर होते हैं, वो तो हर मौसम में, हर खुशबू में चुपके से याद आते ही रहते हैं।

आरजू फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मोहब्बत से भला कब तक यूं नजरें चुराइएगा, दिल की राहों से होकर आखिर हमारे पास ही तो आइएगा। आपका ये रूठना भी कमाल है और हमारा आपको मनाना भी। इश्क में ये छोटी छोटी नोक झोंक ही तो रिश्तों में मिठास खोलती है।

पड़ोसन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 7 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आई मिलन की बेला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सोचता हूं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मगर ये दिल है कि तुम्हारी एक मुस्कान पर अपनी सारी खबर खो बैठता है। तुम्हें चाहना शायद कोई फैसला नहीं, बस एक खूबसूरत एहसास है जो चुपचाप दिल में उतरता गया और पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरी हर खुशगवार सोच का हिस्सा बन गई।

लाल बत्ती फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। हाय झिलमिल, ये शाम के साए हाथ से निकल न जाएं।

मेरा साया फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

0: वक्त हुआ है 1:44 और ठीक 36 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

20 साल बाद फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, इन शब्दों में जैसे किसी के जाने का दर्द भी है और उसे रोक लेने की एक मासूम सी गुजारिश भी। कभी किसी की मौजूदगी इतनी खास हो जाती है कि उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। मन बस यही कहता है, थोड़ी देर और ठहर जाइए, अभी तो दिल की बातें बहुत सारी बाकी हैं।

गाइड फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पुराने बंधनों को पीछे छोड़कर फिर से जीने का मन करता है। बीते हुए कल की उदासी को समेटकर आज में एक नई उम्मीद तलाशने का मन करता है। कुछ गीत इसी एहसास को आवाज देते हैं।

वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

0: ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेल्स एसोसिएशन लिमिटेड के पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोने के औसत मूल्य के आधार पर भुनाए जाने की कीमत 14,957 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। दक्षिण अमरीकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतें ढहने की खबर है। मलबे में दबने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, यहां तक कि राजधानी बोगोटा में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 250 मील पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होज डेल पालमार में था, जहां लगभग 4,800 लोग रहते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pamar. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies, procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users. The Parliament also passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on the key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee meeting held at Parliament House yesterday. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting,

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। पहले प्यार की मुलाकातें भला कौन भूल पाता है, वो पहली नजर, वो झिझकती सी मुस्कान, दिल की बढ़ती धड़कन और घंटों की बातें, सब कुछ आज भी उतना ही ताजा लगता है। वक्त गुजर जाता है मगर पहले प्यार की यादें दिल में हमेशा एक खूबसूरत गीत की तरह बजती रहती है।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कुछ बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती, उन्हें कहने के लिए बस एक नजर ही काफी होती है। नजरें जब दिल का हाल कहने लगे तो समझिए प्यार का मौसम दस्तक दे चुका है।

वक्त हुआ है 2:26 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

खेल खेल में फिल्म का गाना आपने सुना शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। पहली नजर में ही दिल को कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे ये मुलाकात आज की नहीं बरसों पुरानी हो। नजरों ने न जाने कब दिल की बात कह दी और दिल ने चुपके से एक ख्वाहिश कर ली। हमने तुमको देखा कुछ ऐसे जैसे हर जन्म में तुमसे मिलने की आरजू रही हो।

लावारिस फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आकर मिले, जैसे वक्त ने फिर से वही कहानी खोल दी हो और दिल ने मुस्कुरा कर कहा हो। कुछ मुलाकातें देर से होती हैं, मगर शायद इसलिए कि उनका इंतजार और भी खूबसूरत हो।

सौतन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। रात सुरमई है, आसमान पर चांदनी की हल्की सी चमक, हवाओं में एक मीठी सी खामोशी और चारों ओर फैला सुकून। ऐसी रातों में दिल भी कुछ पुरानी यादों के पन्ने खोलने लगता है। कोई भूली हुई मुलाकात, कोई अधूरी सी बात और कोई बेहद प्यारा गीत।

वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 44 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

सौतन की बेटी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे सावन कुमार ने लिखा और संगीत दिया वेदपाल ने। वक्त बीत गया, मौसम बदल गए, जिंदगी अपनी राह पर आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो प्यार आज भी उसी तरह महफूज है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच ये विधेयक प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न

0: उपकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा ना करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्फोटक आयुष निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। ये अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 15 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में बहुत से हंसी पल आते हैं, पर जो बात पहले प्यार की होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। वो मासूमियत, वो पहला एहसास, वो छुप छुप कर देखना और मुस्कुराना। सच में दोस्तों, पहला प्यार किसी पुरानी डायरी में रखे उस सूखे गुलाब जैसा होता है जिसकी महक बरसों बाद भी धुंधली नहीं होती, बिल्कुल इस गीत की तरह।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जीवन मृत्यु से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, सावन का ये महीना हमें सिखाता भी है कुछ, और ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी तपिश हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, सब्र के बाद हर तरफ हरियाली और खुशियां ज़रूर आती हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर बहार।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म राजकुमार से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हम किसी के साथ कैसा बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वही सब साथ में जाएगा और हमारे बोल ही सबको याद रहेंगे, बाकी तो सब मिट्टी है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म धर्म कर्म से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, ये सुदास की आवाज में। फिल्म है सावन को आने दो।

दोस्तों, ये महीना पतंगे उड़ाने का भी है। रंग बिरंगी पतंगे बादलों में जब लहराती हैं तो दिल बाग बाग उठता है, और ये पतंगे आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाती हैं। जिस तरह से हमारा मन होता है ऊंचाइयों तक पहुंचने का, ये पतंगे भी वैसे ही पहुंच जाती हैं, और बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है पतंगे उड़ाने में। तो सुनते हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म शहीद से अभी आपने गीत सुना। कुछ तुम्हारे हैं कुछ मेरे हैं, कुछ तुम्हारे हैं कुछ मेरे हैं, ये जो बिखरे से उजाले और अंधेरे हैं। चलो संग मिलकर एक दुनिया सजाते हैं, जहां तेरे मेरे सपने एक रंग में ढल जाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से अभी आपने गीत सुना। मोहब्बत की राहों में मुस्कुराते चलो, मोहब्बत की राहों में मुस्कुराते चलो, दिलों के फासले मिटाकर बस प्यार बांटते चलो, नफरतों के इस दौर में उल्फत का पैगाम बनो, जहां से भी गुजरो प्यार की एक सुंदर मिसाल बनो, हंसते हंसाते राहों में खुशबू बिखराते चलो, जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगी बस प्यार बांटते चलो, छोटी सी जिंदगी है शिकवे गिले भुलाते चलो, जहां मिले कोई उदास चेहरा वहां एक मुस्कान सजाते चलो, प्यार बांटते चलो।

बिल्कुल दोस्तों, प्यार बांटते चलो। और ये गीत आपने सुना, हम सब उस्ताद हैं फिल्म से, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। और आइए अब प्रोग्राम की अंतिम पेशकश नर्तकी फिल्म से, आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। और अब अरुणिमा से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये विधेयक पेश किया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया है कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने कहा कि इस संबंध में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंजन की मजबूती, उत्सर्जन और ईंधन दक्षता जैसे मापदंडों को कवर करने वाले व्यापक प्रयोगशाला अध्ययनों और फील्ड परीक्षणों ने पुष्टि की है कि E20 निर्धारित मानकों के तहत उपयोग के लिए सुरक्षित है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तेज पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप से 111 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एविलार्डो डेला एस्प्रियला ने बताया कि भूकंप में 87 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोकू क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDP ने विशाखापत्तनम की एक निजी चिकित्सा उपकरण कंपनी के साथ स्वदेशी AI संचालित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक के व्यवसायीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कैंसर से पहले के घाव का शीघ्र पता लगाने के लिए AI सहायता प्राप्त क्षमताओं से लैस देश में ही विकसित पोर्टेबल डिजिटल कोल्पोस्कोप ग्रीवाजिन के निर्माण और व्यावसायीकरण में सहायता करेगा। ग्रीवाजिन में एक हाई डेफिनेशन कैमरा, एक अंतर्निर्मित डिस्प्ले और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञों को नियमित नैदानिक जांच के दौरान पूर्व कैंसर संबंधी असामान्यताओं की पहचान करने में सहायक करता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस सुहानी सुबह में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, ज़िंदगी में हम हर कदम पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। पर जहाँ तक होशियारी सीखने की बात है, वो सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है।

मुकेश की आवाज़ में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये छोटी सी दुनिया है और कब कोई कहाँ पर मिल जाता है, कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, कुछ पता नहीं लगता है। कई बार हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते और वो हो भी जाता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रंगोली से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर।

दोस्तों, मुस्कुराना भी एक कला है, क्योंकि अपनी मुस्कान से ही हम दूसरों के चेहरों पर चमक ला सकते हैं। जब कोई दिल से मुस्कुराता है तो आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लहू के दो रंग से ये गीत।